पल्ला माझी गरज आए गस के साजनी मल्ला तुझी न पल्ला माझी गरज आए गस के साजनी एक हाथा न वाजन ताली न चाले गाड़ी एक हाथा गानी मग येते सुनागा पोरी चल पीराला जाऊं आता येते सुनागा पोरी चल पीराला जाऊं जोडीन जाऊं सिनेमा

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज सुनता।
1: तुम्ही ऐकत आहात गोष्टी तुमच्या आमच्या आरजे ऋतू सोबत।
2: श्रोते हो नमस्कार, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा। मी आहे आरजे ऋतू तुमच्या सोबत आणि गोष्टी तुमच्या आमच्या हा आपला शो सुरू आहे। आपण आता ऐकणार आहोत गुरु प्रवचन भाग एक।
3: नहीं बोलना। से मैंने ध्यान में रखा अशुभ शब्द बोलना भी नहीं, अशुभ शब्द सुनना भी नहीं। इसलिए कल मैं थोड़ा सा कम मिला लोगों को, उसमें भी कुछ लोग आए थे और किसी ने बोलना शुरू किया। मैंने कहा भैया प्लीज, आज मेरा प्रवेश का दिन है, गुरु चरणों में मैं 17 साल के बाद आया हूं, मुझे उस खुशी में रहने, आज ये चर्चा मुझे सुननी ही नहीं। आषाढ़ी पूर्णिमा प्रवचन से परिवर्तन नहीं आया, किससे परिवर्तन आया? माहौल से। किसे? माहौल चेंज हो गया। उन 50 दिन के अंदर रेगिस्तान नंदनवन हो गया, जैसे गुफा में से वो बाहर आए तो मस्त मस्त हवा, भिनी भिनी खुशबू, सब तरफ पंछी चहक रहे हैं और मीठा मीठा फल आ गया रहा है। अब जिन्होंने कभी ठंडी हवा का एहसास ही नहीं किया, बदबू के अलावा कुछ पता ही नहीं था, और इतने रसीले फल देखे कि मुंडा ने पानी छूटियो। जिसो ठाको हेलो, फल देखकर के मुंह को पानी छूटता है कि स्पाइसी खाना देखकर के मुंह को पानी छूटता है? हाँ, बोलना तो कहीं दिक्कत को नहीं, मारा साथे बोलने दिक्कत को नहीं, पड़ोसी साथे नहीं बोलना है ना, अपने मुंह को पानी कब आता है? सफरचंद देख करके, मौसम भी देख करके, चिक्कू देख करके, कभी आ रहे वह चीन से सामने आई ना तो थोड़ा सा पानी आवे, लेकिन स्पाइसी खानों सामने आयो ना पीछे तो पानी मुंडा में टिके को नहीं, और वो फल को देख करके मुंह में पानी आया, क्या खुशबू होगी फल के ना, क्या रसीले फल होंगे, और फिर वो सारे जब बाहर आए और सारा माहौल देखा तो जो लड़ने के लिए दौड़ते थे ना, जो लड़ने के लिए दौड़ते थे वो गले मिलने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, दौड़ो ला कोई बोलो इसको नहीं, किसके लिए दौड़ पड़े वो पहले, किस लिए दौड़ते थे? हेलो, लड़ने के लिए। आप किस लिए दौड़े आज? बस आषाढ़ी पूर्णिमा वो दिन है कि अंदर की सारी हैवानियत समाप्त हो गई। हैवानियत समाप्त होने की शुरुआत हो गई, माहौल चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, नगर का माहौल। अरे नगर की बात करो जरा तो बोलो ना, नगर का माहौल हुआ क्या? हो गया, इसका ये प्रमाण तो थोड़ा सा मिल गया है, पूरा नहीं मिला है। इसलिए मैं शुरुआत कर रही हूं ना, पूरा होने तो 4 महीना है ना, लेकिन तीर्थ शिष्य मार्ग सामने पूछ सको कि वे 8 अवतार ना इतना लोग आवन की उम्मीद करी थी। मुझे पूरा सपना थाने लेने घना छोटा है, पूरा सपना थाने लेने घना छोटा है, मुझे वो सपनों भर भरने पूरा हो गया। किसो यो भर भरने पूरा हो गया, मारो सपनो अधूरो रह गयो। मुझे ऐसा लगा था, मैं ऐसा सोच रहा था कि कल जगह सवेरे को 7 बजे कौन आया रहा था, कोई 6 बजे कौन आया रहा था, कम से कम 8 बजे तो आ जाएगा, 8:15 में तो आ जाएगा।
4: किसी से जाइए
3: किसी में जाए मेरे कृष्ण कटक प्रभु परमात्मा दुश्मन को दुखी देख करके तेरे आंखों में आंसू आने चाहिए खुशी आने चाहिए किसको दुखी देख करके दुश्मन को अपनों को दुखी देख करके तो डर जाना चाहिए और जिस दिन दूसरे को दुख देना बंद कर दोगे दूसरे को उलझना बंद कर दोगे उस दिन नरक गति के दरवाजे हेलो बंद हो जाएंगे आज की भाषा में बोले दूसरे को दुख देने वाले के अंदर में टॉक्सिन पैदा होता है मैं आपको कैसे सुनाता हूँ झुंझुड़ करियो लड़ाई करियो दूसरे से परेशान करियो उस समय जाए आप लोग ब्लड चेक कर गए जो टॉक्सिन लड़ाई नहीं करिए और ये टॉक्सिन जब कंटिन्यू बदलते चले जाता है एक ही बजा रहा है। लोग सो जो ये करे

समझे। बाहर में नहीं, कहा कि सूर्य के अंदर, पृथ्वी सूर्य कहा के है, अंदर के सूर्य कहा के सूर्य है, आपके अंदर में अंधेरा ज्यादा है कि बाहर में अंधेरा ज्यादा है, आप अंधेरे को ले जा रहे हैं, अंदर में अंदर ज्यादा है। बारे तो आप अंधेरे को बंद कब करिए, क्योंकि हीटर जल लग जाए, टॉर्च जल लग जाए, लाइट लग जाए, बारे में आप कब कब होए, अंदर में अंधेरा कब होए कि बढ़ गए हो, बढ़ गए हो। तो जो अंदर का अंधेरा दूर करते हैं तीर्थ। आप किसी लगे था ने वो आवाज हाँ अच्छी लगी नहीं लगी ना, पक्को ना, पक्को ना, जल्दी हाथ जोड़ो, जल्दी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़, अरे हाथ जोड़ ना, हाथ जोड़ बाबू से, हाथ जोड़। ऐसी आवाज 24 घंटे तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। ऐसी ऐसी आवाज 24 घंटे तक मेरे मुंह से नहीं निकलेंगी। तस बनते पड़िकवह निंदह ग्रह ओसरे ओसरे ओसे, बोलो ना ओसरामी, ओसरामी बोल लो रे बेना, है ना। अब बाबू सेट ओसरामी बोले कि नहीं बोले, बने सुना ही नहीं दियो। हाँ अब सोचो थे घरे जाने इसी आवाज नहीं बोलिया तो घर आषाढ़ी पूर्णिमा शुरू हुईला कि नहीं हुईला, हाँ हुईला कि नहीं हुईला। थका दुकान मतलब नौकर किला सेठ, आज तुमसे आवाज रोज सारखा नहीं हो ना, काय झालं। प्रेमाने सांगायचं भाऊ आज तिथं प्रवचन गेलतो ना, त्यांनी इंजेक्शन दिले, कोण नौकर कहेगा रोज जा जा शेठ, है ना। आज तुम्हारा आवाज घर में ऐसा नहीं होगा तो घर की बहू, घर के बच्चे, घर के श्रीमान जी कहेंगे तू जल्दी जाया कर, मैं भी आऊं थारा साथे। तुम्हारे मेरी प्रवचन परमात्मा के आलंबन से तुम्हारे जीवन में तीर्थ बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे साथ आना शुरू हो जाएंगे। वे कहे देखे ये बखान सुने, जिसा गया था उसा आया, धोबी ने कपड़ा धोने दिया, हेलो धोबी ने कपड़ा धोने दिया, उसारा उसा वापस आया पैकिंग करने, तो उन धोबी ने वापस कोई कपड़ा देवे, बराबर है क्या? मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं ना, कटे गलत बोलो तो करेक्शन कर दे जाते ना, और कटे कपड़ा था बिल्कुल धुलियारा वापस आ गया बिल्कुल नवा नवा, तो ये पूछी ना कौन तो धोबी का नहीं कपड़ा दिया था, तो थाको मन आठो धुले धुले गयो ना, वे पूछी ना कौन की धुले मशीन लगी, तो बता दे जो आनंद तीर्थ समोशरण की धुलाई मशीन है ना। घना मनवार से
समर्पण चतुर्मा समिति लई बोलना है ना? अच्छा लगा मुझे, कल अगली बात करूंगा। आज दो तीन सूचना दे करके मंगल पाठ दे रहा हूं, क्योंकि अपना टाइम क्या है 9:55 को मंगल पाठ, 9:55 को मंगल पाठ। दो तीन मेरी ओर से सूचना है। पहली सूचना ये है कि भाई लोग जब भी आएंगे, बहनें जब भी आएगी, तो शुरुआत से बैठना शुरू करेगी, अपने दाएं बाएं चेयर खाली नहीं छोड़ेगी। और जो जो जवान आते हैं उन्होंने आगे आना है, जो जो तन से जवान मन से जवान है उन्होंने आगे आकर के व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में आना, मोमबत्ती लगाना। ड्रेस चेंज करना हो तो कल से आगे व्यवस्था हो जाएगी, ड्रेस चेंज की भी व्यवस्था हो जाएगी, और मस्त पैकिंग सामायिक लेकर बैठ सकते हैं। सामायिक लेकर नहीं बैठ सकते तो दूसरी व्यवस्था में कल यहाँ कर देता हूँ, संवर लेकर के बैठ सकते हैं। क्या लेकर के बैठ सकते हैं? संवर लेकर के बैठ सकते हैं। और संवर के पचकान लेकर के आप यहाँ बैठोगे तो आपकी तीर्थ बनने की यात्रा शुरू हो जाएगी। और बिना संवर के बैठोगे तो तीर्थ बनने की यात्रा शुरू नहीं होगी। लोगस्य उज्जयगिरे धम्म तीर्थ यरे जिने, जो मेरे को धर्म का तीर्थ बनाते हैं, अरिहंते कित्ते सम, ऐसे तीर्थंकर की मैं भक्ति करता हूं, ऐसे तीर्थंकर मेरे पर प्रसन्न हो और मेरा धर्म सिद्ध हो जाए, ऐसे अरिहंत को, ऐसे तीर्थंकर को मैं मेरे देव के रूप में ग्रहण करता हूं। अरिहंतो महादेवो मये गहियम, बोलो अरिहंतो महादेवो मये गहियम, अरिहंतो महादेवो मये गहियम। और 29 तारीख से ही तीर्थंकर परमात्मा के शासन का आवश्यक आगम, कौन सा आगम बोलो, आवश्यक समझते हो ना, नेसेसरी, एसेंशियल, एसेंशियल 32 आगम है। कितने आगम है? 32 आगम है। स्थानकोशी परंपरा में आगम कितने हैं? सितंबर परंपरा में 45, अपने स्थानकोशी परंपरा में 32, सितंबर परंपरा में 45। इन दोनों में 45 में भी और 32 में भी एक आगम है, उसका नाम है आवश्यक आगम। क्या है? आवश्यक सूत्र। इस चतुर्मास का लक्ष्य है कि धर्म सभा में आने वाले को 120 दिन में चतुर्मास पूर्ण होने तक आवश्यक आगम कंठस्थ कराना है। हेलो, कभी कभी मैं कान से सुनू, कभी कभी मैं आख्या से सुनू, है ना, थोड़ा ध्यान में रख जाओ। आवश्यक आगम कंठस्थ कराना इस चतुर्मास का लक्ष्य है। पहले मेरा विचार था 10 बजे से उसका पाठ शुरू करूंगा, लेकिन आज मेरा यहाँ आने के बाद मन हुआ कि 8:45 से 8:55 तक। क्या? हेलो, 9:45 तक 10 मिनट तक यहीं पर प्रतिक्रमण याद करा रहा हूं 10 मिनट में। और 10 मिनट में आप मेरे साथ रोज 2 लाइन यहां बोल लोगे ना, तो
आपको घर जाकर के याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। कैसा लगता है मेरा प्रपोजल? अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। मुझे अनिल भौरो कही हुई मालूम है कि 10 बजे दुकान माते जावन की खुल्लो हो गयो है ना। उन्होंने पहली बुलाया चाली लाइश, पर वो 10 बजने के बाद जो को है ना वो तो पोखरना ज्वेलर्स दिखे, बाकी के दिखे इसको नहीं। वे काल की बात अलग थी, कल रविवार तो वाह क्या बात है, बढ़िया है। लेकिन लेकिन लेकिन समझो ना, लेकिन की भाषा समझे कि नहीं समझे सब ट्रस्टी? खुल कर गई, कल से तुम सिंगल बैठेंगे तो तुम्हारी खुर्ची छूट ही जाएगी। घरवाली थारो वंश घरवाली चलाएगा, थारो बेटो चलाएगा। न्यू जनरेशन चाहिए चाहिए, आपके साथ में चाहिए चाहिए। जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनकी बात छोड़ करके जो तुम्हारे कमाने में लगे हैं वो यहाँ चाहिए। जो तुम्हारी दुकान पर कमाते हैं ये मेरे गुरुदेव की दुकान पर भी कमाने वाले चाहिए। फिर नाम नहीं लियो अबे, तब तक कारण लेकिन भी भाषा समझ जाओ। काजे लेकिन रा तीन शब्द ने खोलन को मने अवसर मत दे जो। ओके चदारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोत्तम मंगलम चदारी लुगतमारी अंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहू लुगतमा केवली पन्नतोत्तम लुगतमा चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि अरिहंतो का शरण सिद्धो का शरण साधुओ का शरण दया धर्म का शरण चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुख हरण सुख करण और न शरण कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद जय।

0: जय आनंद आनंद गाओ चला जय। आचार्य भगवंत जैसे आनंद श्री जी महाराज साहब की, और कल मुझे महामंत्री जी ने बताया कि 200-300 लोगों के चरण सेवक यही रह गए, तो मैंने उनको कहा उनके यहां नहीं रह गए, उनके और कोई लेकर के गया। अनु बिल्कुल प्रेम से चले गए उसको ले जाने वाले को धन्यवाद देते हुए। और यदि आप चाहते हैं कि आपके चरण सेवक आपके पास ही सुरक्षित रहे, तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता सकता हूं। जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है ना, उन्होंने बिना चप्पल पहने आना, और जो टू व्हीलर में आते हैं, जो फोर व्हीलर में आते हैं, उन्होंने अपने चप्पल, हाँ टू व्हीलर में डिक्की है ना, उठे से रखने आओ ना, मंजे दूजा कहने जाइलास को नहीं है ना, इसको कर सका ना। हाँ बहुत अच्छा। आज के पचकान एकासन एकासन उगे सूर्य एक समय गभलां तीन हार के पचकान स्वासनम खैमन सैमन ससा करे नम हत्ता करे नम सो समय वत्या करे नम ओसरे ओसरे ओसरे आज का एम बिल उगे सूर्य आयम बिलम पचकामी लेवल वेलम ससा करे नम हत्ता करे नम सो समय वत्या करे नम ओसरे ओसरे ओसरे आज का उपवास आज को पास उगे सूर्य मदटम मत्कामे दिव्यम व्यारम स्वासिनम खैमम सैमम सस्सा गरेणम हत्ता गरेणम सो समया वत्या गरेणम ओसरे ओसरे ओसरे। और कोई पचकान
1: तेला
0: तेला आज का तेला उगे सूर्य अट्टम मत्तम मत्कर दिव्यम व्यारम स्वासिनम खैमम सैमम सस्सा गरेणम हत्ता गरेणम सो समया वत्या गरेणम ओसरे ओसरे ओसरे। तीले के पचकान लेने वाले को कल एक धन्यवाद दिए गए थे। कल बहुत सारे भाइयों ने और बहनों ने वो गुरुदेव के चेले के साथ तीला किया था, और वो मुझे पता ही नहीं चला, वो कल पता चला। कईयों ने चंदन बना का तीला किया, तो कल जिन्होंने गुरुदेव के चेले के साथ तेला किया उनको आज जम करके क्या देना चाहिए जरूर। कल जिन्होंने परसों जिन्होंने तेला किया उनको
1: धन्यवाद।
0: और कोई पचकान अरे मिज्जा के पुरुषाकार टीम दोपहर में 2 बजे फुल टीम आकर के मिलेगी। अरम पुरुषाकार के नगर के सारे टेनर 2 बजे आकर के मिलेंगे।
2: तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, आचार्य देवेंद्र मणि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य पूज्य शिवमणि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। मंच पर उपस्थित अरम विद्या के प्रणेते उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। मधुर घंटी पूज्य तीर्थेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। मंच पर उपस्थित साधिगण के चरणों में कोटिशा वंदन।
0: एक मिनट बाबू शेठ, दोनों की ओर से कुछ स्पष्टीकरण दे दो। आपको समय का संगठन नहीं लगता है, क्योंकि नीचे जो कारपेट बिछाया हुआ है वो चिपकाया हुआ है, वो हिलने वाला नहीं है। यदि हिलने वाला होता तो मैं कभी का उठा चुका होता है ना। जहां मेरे आने के लिए लगा हुआ था हिलने वाला, मैंने उसको हटा दिया है ना, पहली बात। इसलिए सामयिक में संगठन आपको नहीं लगता है। अष्ट प्रहर पौषध किसको कहते हैं, कैसे करना है, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। शिविर में फीस कम रहेगी तो है ना, शिविर में फीस ऑलरेडी बहुत कम है। क्या बहुत कम है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, नए साल में जो शिविर की फीस रखी जा रही है टीचर ट्रेनिंग की, वो 51,000 है। कितनी है? 51,000 है, कि किसी की 41,000 है, किसी की 31,000 है, और 2026 में है वो, 2027 में सभी टीचर ट्रेनिंग की फी 1,00,000 रुपए होने वाली है ना? आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, जिन शासन के ये टीचर जो आपको सिखाते हैं वो बाहर सीखने के लिए जाओगे तो आपको 50,000 से कम फीस कहीं पर भी नहीं देनी पड़ेगी। सेकंड, चाहे संघ ने व्यवस्था करी हो, व्यवस्था संघ की है, लेकिन 3 दिन का स्टे, 3 दिन का आसनम पानम खाइमम साइमम और 3 दिन के टीचर की ज्ञान के अलावा जो ड्यूटी है, ज्ञान की बात छोड़ दो, आप केवल हॉस्पिटलिटी की भी चर्चा करोगे तो आपको पता चलेगा कि फीस कम है और इस फीस में से कोई प्रवीण ऋषि को कमाई करनी है। समझ में आई ना? तो फीस की चर्चा बंद करिए आज।
2: उपस्थित भाइयों और बहनों को समर्पण चातुर्मास समिति के सभी ट्रस्टी की ओर से साधुवाद है, और गुरुदेव ने जो अपने प्रवचन में फरमाया, माहौल तो निश्चित ही बदल गया है। कल से आप देख रहे हो नगर के, नगर वालों के अंदर जो उत्साह और एक ऊर्जा है वो इसी तरह 4 माह तक कायम रहेगी। मैं वापस एक बार समर्पण चातुर्मास समिति की ओर से सबको साधुवाद देता हूँ। आज की भोजन, आज के सुबह नाश्ता, भोजन और डालू की व्यवस्था प्रमुख लाभार्थी श्रीमती प्रमिला ताई सौरभ जी बोरा परिवार की ओर से रखी गई हुई है। सभी बाहर गांव से आए हुए अतिथियों को नम्र निवेदन है कि भोजन का भ्याड़ू का लाभ भोजन कक्ष में जाकर लेना है। और ये आज हमारे खाबिया साहब आए, उनको 1 मिनट कुछ स्तवन गाना है, तो जल्दी स्टेज पर आ जाए। यही वही बैठ के मैं माइक देता हूँ।
0: साथ में कर्मा का शिविर 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। कर्मा सीक्रेट ऑफ कर्मा का शिविर 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। सुबह है 8 से 8:45 तक और शिविर होगा आनंद धाम में, शिविर होगा आनंद धाम में, प्रवचन होगा यहाँ पर। इस बात के ध्यान रखिए, जिन्हें जिन्हें सीक्रेट ऑफ कर्मा में जुड़ना हो वे काउंटर पर उनके ट्रेनर से संपर्क करें।
3: अत्र विराजित उपाध्याय श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज मैं एक चंद लाइन में अपनी प्रार्थना प्रेषित करता हूँ।

मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो। नाम पाप परिहार हो और पुण्य का

हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर पिघल जाएगा। देखो तुमसे

है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना विराजमान स्नेही से तीर्थ सुशी जी महाराज साहब बहुत बसंत गुरु भक्ति के इस पावन भूमि पर भक्ति का आनंद लेने के लिए आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तगण आषाढ़ी पूर्णिमा का कुछ सीक्रेट कल आपने सुना है जो जम्बूद्वीप नवती का है। जब भी अरे में परिवर्तन आता है, वैश्विक ऋतु परिवर्तन जब होता है, तो वो दिन है आषाढ़ी पूर्णिमा। एक मनुष्य की मनुष्य बनने की यात्रा जिस दिन शुरू हुई वो आषाढ़ी पूर्णिमा है। मनुष्य की भगवान बनने की यात्रा जब शुरू हुई वो आदि तीर्थंकर ऋषभ देव ने जिस समय तीर्थ की स्थापना करी तब इंसान की भगवान बनने की यात्रा शुरू हुई। उसके पहले आषाढ़ी पूर्णिमा से जो यात्रा शुरू हुई वो इंसान की इंसान बनने की यात्रा शुरू हुई और वो स्वयं के समस्या हुई। कल आपने सुना कि बाहर का पर्यावरण चेंज हो गया, वातावरण चेंज हो गया, गर्मी गायब हो गई, हरियाली दिखने लग गई, मन भी हरा हरा हो गया है। बाहर गर्मी थी तो मन भी गर्मा गर्म था। बाहर सरसता आ गई तो जीवन में भी सरसता आ गई। फिर इसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? शाश्वत जो संवत्सर शुरू होता है वो आषाढ़ माह से शुरू होता है। बाकी आपका चैत्र महीना, कार्तिक का महीना, ये सब बात के है। और जीवन की शुरुआत करनी हो तो बिना गुरु के जीवन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है।
1: Mani, promise.

चाहिए कि गुरु को हमने स्वीकार करना चाहिए? सवाल आपके सामने, गुरु मिलना चाहिए कि गुरु को हमने ग्रहण करना चाहिए? हेलो, गुरु नहीं मिला ऐसा संसार का एक भी प्राणी नहीं है। भगवान नहीं मिला ही आप कह सकते हो, इंसान नहीं मिला ही आप कह सकते हो, जन्म देने के साथ मां चली गई ये आप कह सकते हो, पिता जन्मने के पहले चला गया ये आप कह सकते हो, मुझे पत्नी नहीं मिली ये कह सकते हो, मुझे पति नहीं मिला ये कह सकते हो, लेकिन गुरु नहीं मिला ऐसा होता ही नहीं। गुरु मिलते ही मिलते कि गुरु का काम ही है, गुरु का दायित्व है, गुरु की ड्यूटी है कि वो आपको मिलता रहे। गुरु को खोजना नहीं पड़ता है, गुरु आपको खोजता है। कोई मिट्टी कुम्हार को नहीं खोजती है, कोई पत्थर मूर्तिकार को नहीं खोजता है, कोई बीज माली को नहीं खोजता है। मिट्टी लाने के लिए कुम्हार ही जाता है, पत्थर खोजने के लिए और पत्थर लाने के लिए मूर्तिकार ही जाता है, कोई पत्थर मूर्तिकार के पास चल करके नहीं आता है, पत्थर के पास ही मूर्तिकार चल करके जाता है। बीज लेने के लिए बोने के लिए किसान ही जाता है, माली जाता है। किसी बीज ने, किसी पत्थर ने, किसी मिट्टी ने आज दिन तक प्रार्थना नहीं करी कुम्हार से, मूर्तिकार से, कि माली से कि तू मुझे मूर्ति बना, तू मुझे घड़ा बना, तू मुझे बो, किसी ने नहीं करे। एक कुम्हारी, एक कुम्हार कहते ही उसको जो मिट्टी खोजता है। गुरु मिलते, गुरु नहीं मिलते ऐसी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी हमारी जिंदगी की शोकांतिका कह लो, दुर्भाग्य कह लो, कि दुनिया में सबकी कदर होती है, गुरु की कदर नहीं होती है। लेट मी रिपीट, दुनिया में सबकी कदर होती है, गुरु की कदर नहीं होती है। कभी हम गुरु को अपना नौकर भी बना लेते हैं, दुर्योधन बन कर गए। कभी हम गुरु के खिलाफ परिस्थिति के आधार पर अपने लक्ष्य के लिए जिस गुरु के प्रति प्यार है उस गुरु के खिलाफ लड़ने के लिए भी खड़े हो जाते हैं, अर्जुन बन करके। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कोई था तो अर्जुन था, और अर्जुन भी अपने गुरु से प्यार करता ही था, अपने गुरु के प्रति उसके मन में श्रद्धा भी थी, लेकिन उस श्रद्धा में उतना बल नहीं था कि जो परिस्थिति को दांव पर लगा दे, जो जिंदगी को दांव पर लगा दे। ये बल किसी में था
तो उसमें था जिसको गुरु ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिसने गुरु को स्वीकार किया एकलव्य। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को स्वीकार नहीं किया। किसी की प्रार्थना का ऐसा तिरस्कार किया जा सकता है? किसी के समर्पण को ठुकराया जा सकता है? इस दर्द को किसी ने झेला है तो एकलव्य ने झेला है, लेकिन तिरस्कार करने वाले गुरु को भी उसने छोड़ा नहीं। इनकार करने वाले गुरु को भी उसने बाय बाय नहीं किया। क्या कलेजा है एकलव्य का? क्या हिम्मत है एकलव्य की? जो गुरु स्वीकार नहीं करता है, जिस गुरु ने ठुकराया है, उस गुरु की वो पूजा करता है। सोचते चले जाइए, सुनते चले जाइए, लेकिन उनको सुनना मत के मत सोचते भी चले जाना और स्वयं को चेत भी करते चले जाइए। कि मेरी श्रद्धा कैसी है, मेरी आस्था कैसी है, मैं किस गुरु को पसंद करता हूं जो मेरी प्रशंसा करे उस गुरु को, जो मेरे अहंकार को संभाले उस गुरु को, जो मेरी इच्छा पूरी करे उस गुरु को, मैं किस गुरु को स्वीकार करता हूं? जो मुझे खुश रखे उस गुरु को, चेक कर लेना है। एकलव्य आपके लिए अनजाना नाम नहीं है। और वो कोई मूर्तिकार नहीं है, उसको कोई मूर्ति बनाते आती नहीं है, लेकिन एक मिट्टी का बना लिया उसने। बाहर के मिट्टी के पुतले को आकार नहीं था, लेकिन एकलव्य के दिल में जो द्रोणाचार्य थे, उतने जीवंत द्रोणाचार्य न अर्जुन को मिले, न अश्वत्थामा को मिले, न दुर्योधन को मिले। अर्जुन को द्रोणाचार्य का ज्ञान मिला, लेकिन द्रोणाचार्य की शक्ति नहीं मिली। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपना नौकर सेनापति बनाया, लेकिन फिर भी दुर्योधन के भगवान द्रोणाचार्य नहीं हुए। द्रोणाचार्य की भगवत्ता किसी को मिली है तो उसको मिली है जिसको द्रोणाचार्य देखना भी पसंद नहीं किया है, अपने पास रखना भी स्वीकार नहीं किया है, और उसके दिल में द्रोणाचार्य है। वो द्रोणाचार्य को सुनता है, द्रोणाचार्य उसको सुनाते नहीं है, पर वो द्रोणाचार्य को सुनता है। द्रोणाचार्य उसको कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन वो सारा कुछ किससे लेता है? बोलो, द्रोणाचार्य से।
उसने दूसरे गुरु बहुत थे उस समय, और गुरु के पास वो जा सकता था लेकिन नहीं गया। शिष्य उसको कहते हैं जो ग्रहण करने में समर्थ होता है। दोहराएंगे, शिष्य उसको कहते हैं जो लेने में समर्थ है, लेने का सामर्थ्य चाहिए, लेने की कला चाहिए। किसी फूल से आप मुझे शहद निकाल करके बताओ, फूल से शहद कौन ले सकता है? केवल मधुमक्खी ले सकती है। लेने का सामर्थ्य चाहिए, और एक लगे में वो सामर्थ्य लेने का सामर्थ्य। देने वाला देता है नहीं देता है एक लगे पूछता ही नहीं है, और इस तरीके से लेता है कि द्रोणाचार्य को पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे से अर्जुन से भी ज्यादा कौन ले रहा है, पता ही नहीं उसे चल रहा उसको। अर्जुन को तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा मुझे दे रहे द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य का दावा भी वही है कि मेरा एक नंबर का शिष्य कोई होगा, सर्वश्रेष्ठ कोई होगा तो तू ही होगा। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए द्रोणाचार्य तड़पते हैं। एकलव्य को कोई सर्वश्रेष्ठ बनने की तमन्ना नहीं है, उसको तो केवल ग्रहण करना है। आचार्य मानतु पांचवें आर्य में हुए हैं, और भगवान ऋषभदेव चौथे आर्य हुए हैं। मैं अगला सवाल आपको दूंगा, पांचवें आर्य में आचार्य मानतुंगा ऋषभदेव के दर्शन करते हैं, किसी मंदिर में नहीं करते हैं, जेल खाने में, कहा है जेल में। एक लोगों को तो कम से कम खुला आसमान मिला कि वो मूर्ति बना ले, आचार्य मान तुमको तो वो भी नहीं मिला है, वो तो जेल में हार्डली हेलो जकड़े हुए, पांव भी जकड़े हुए। जकड़ लो तुम मेरे हाथ, जकड़ लो तुम मेरे पांव, रख दो तुम मुझे जेल में बंद कर करके, लेकिन तुम्हारे हाथ में मेरा केवल शरीर ही आएगा, मैं नहीं आऊंगा। आचार्य मानतुं की आत्मा, आचार्य मानतुं जकड़े हुए नहीं है। कौन जकड़ा हुआ है? शरीर जकड़ा हुआ है। हमारा शरीर खुला है, हमारा शरीर खुला है, हमारा मन हेलो थका मन रो पूछ रही हूं, आपका मन खुला है कि जकड़ा हुआ है? देख लो एक बार, आचार्य मानतुं का शरीर जकड़ा हुआ है लेकिन दिल खुला है। एकलव्य के पास द्रोणाचार्य नहीं है, लेकिन एकलव्य के दिल में द्रोणाचार्य है। कल गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम है, और 2007 से गुरुदेव की कृपा से एक अनुष्ठान शुरू किया है,
गुरुदेव के एकलव्य तैयार हो जाए, गुरुदेव के आचार्य मंतुंग तैयार हो जाए, गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम क्या है, आचार्य मंतुंग बनाने का कार्यक्रम है, एकलव्य बनाने का कार्यक्रम है, अरे तुम तैयार हो जाओ ग्रहण करने के लिए, कृपा तो 24 आवर्स बरस ही रही है। गुरु का मेघ ऐसा नहीं होता कि जो केवल सावन भादों में बरसता है, गुरु का मेघ, गुरु का बादल तो 12 महीने 24 घंटे बरसता है। गुरु मिले नहीं ये बोलना मत, मैं गुरु को नहीं मिला ये जरूर बोलना है। गोशालक को भगवान महावीर पहले मिले कि इंद्रपुत्र गौतम को पहले मिले, गोशालक को पहले मिले, इंद्रपुत्र गौतम को तो 12 साल के बाद मिले। और मजे की बात, गजब की बात, अनूठी बात, इंद्रपुत्र को ही भगवान महावीर को मिलने के लिए नहीं गए थे। हेलो, किस लिए गए थे? लड़ने के लिए गए थे। किसके लिए गए थे? लड़ने के लिए गए थे। गुरु होना चाहिए तो तीर्थंकर महावीर जैसा, और शिष्य होना चाहिए तो एकलव्य और इंद्रपुत्र गौतम जैसा। लड़ने के लिए गए थे, चुनौती देने के लिए गए थे, अहंकार से गए थे, भक्ति से नहीं गए थे। वो सर सर नहीं जो हर दर पर झुके, वो सर सर नहीं जो हर दर पर झुके, वो दर दर नहीं जहां हर सर ना झुके। ऐसा दर किसी का है? वो तीर्थंकर महावीर का है। ऐसा दर किसी का है तो तुम्हारे और मेरे दिल में विराजे हुए गुरुदेव का है।

0: तीर्थंकर महावीर जो काटने के लिए आया चंडकोशिक, ये पता था कि चंडकोशिक काटता है। चंडकोशिक जिसको दिखता देखता है उसकी मौत से मुलाकात हो जाती है। इतिहास है कि महावीर के पहले जो भी चंडकोशिक से मिला है वो जिंदा नहीं रहा है। इसलिए कोई चंडकोशिक के रास्ते पर जाता ही नहीं था, लेकिन महावीर वहां चल करके गए लोगों के रोकने के बावजूद। चंडकोशिक ने महावीर की भक्ति नहीं करी, पहले विरोध किया, आक्रमण किया, लेकिन गुरु कृपा क्या होती है? जहर देने वाले को अमृत पिला दे वो गुरु होता है, मारने वाले को जिंदगी दे दे वो गुरु होता है। सारे दांव जिसके सामने फेल हो जाते हैं वो गुरु होता है। नरेंद्र बहुतों के पास गया है, लेकिन पागल जिसे रामकृष्ण परमहंस को एक बार मिला है, तो दुनिया को विश्व गुरु मिल गया है। यदि रामकृष्ण परमहंस न होते हैं तो स्वामी विवेकानंद दुनिया को मिल ही नहीं सकते थे। गुरु वो होता है जो जिंदगी के रेगिस्तान को नंदनवन बना करके छोड़ता है। नादान होते हैं लोग जो नंदनवन बनाने वाले को रेगिस्तान बनाने का प्रयास करते हैं। जिसके हाथों से अपनी जिंदगी नंदनवन बन सकती थी उस गुरु को ही अपना नौकर बना लेते हैं, दुर्योधन बनकर के। ग्रहण करने का सामर्थ्य जिसके पास होता है वो शिष्य होता है, लेने की कला जिसके पास होती है वो शिष्य होता है। जो ले सकता है वो बीज है, जो ले नहीं सकता वो कंकर है। कल का दिन बीज का दिन है, कल का दिन सीड का दिन है, कंकर का दिन नहीं है। तुम लेने के लिए तैयार हो तो बरसने के लिए हो, तो तुम तैयार हो उसके पहले से बरस रहे हैं। आज जिस गुरु ने सिखाया नहीं, जिस गुरु ने कभी प्यार से बुलाया नहीं, वही गुरु जब देखता है कि मैं जिसको सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता हूं उससे बढ़िया कोई है, जो कला मैं नहीं जानता, तीर चलाना और जख्म न होने देना है। हेलो, कुत्ते को जख्म हुई थी क्या? एक लोभी ने तीर चलाए, कुत्ते का भौंकना बंद हुआ था, किसको जख्म हुई थी? जख्म नहीं हुई थी, लेकिन भूखना, बोलो ना जल्दी से, बोलो ना जल्दी से, तुम घर की आवाज बिना सामने वाले को चोट पहुंचाए बंद कर सकते हो क्या? हेलो, सामने वाले को दुखाना नहीं और उसका भौंकना बंद करना है। हेलो, अपन क्या करा? तू भूखे तो मैं भी तैयार होता साथ। क्या कला है एकलव्य के पास, क्या गजब की कला है कि द्रोणाचार्य भी स्तब्ध है, चकित है, सरप्राइज। और जब उसको पास जाकर के पूछा कि भाई किससे सीखा, अच्छा हुआ ये नहीं पूछा किसने सिखाया, क्या पूछा किससे सीखा, तो एकलव्य ने कहा मैंने तो द्रोणाचार्य से सीखा। अब द्रोणाचार्य से सीखा कहने के बाद तो अर्जुन ने कितनी अच्छी नजर से द्रोणाचार्य को देखा होगा। हेलो, थाने मालूम पड़ जाए कि थाका से छिपने, थका बाप ने, थका बेटा ने, थका भाई ने थका से छिपने कह दिया है। हेलो, बाप को कैसे देखोगे? उस समय बाप बाप दिखेगा कि सांप दिखेगा? धन्यवाद था नहीं खरो बोला मनु, धन्यवाद था नहीं है ना। और जब द्रोणाचार्य के सामने उसने कहा कि मैंने द्रोणाचार्य से सीखा है, तो द्रोणाचार्य तो बेचारे परेशान हो गए, अरे मैंने कब सिखाया, मैंने कब सिखाया, मैं तो तुझे। हेलो, तब एकलव्य ने कहा, याद आता है आपको कि मैं आपके पास आया था, मेरा नाम एकलव्य था। हाँ बोले, लेकिन मैंने तुझे सिखाया नहीं, मैंने तुझे, लेकिन एकलव्य के था मैंने आपसे ही सीखा है, मजा है ना। हेलो, बोलो ना यार, कहीं मजा है? द्रोणाचार्य के मेहदियों को नहीं और एकलव्य के था मैंने आपसे लिया है। अपना थोड़ा उल्टा मामला है, अपना थोड़ा उल्टा मामला है। अपना ने घर वाला क्यों तारे वे, अरे बाबा मैं थारो कोई बुरो करियो को नहीं, ठेस करियो। हेलो, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो ये कह कर गए मेरे पास, हमारी जिंदगी कोई बर्बाद करी है तो हमारा बाप नहीं करी है। हेलो, नहीं थे नहीं बोले, धन थोड़ी कह रही हूं मैं, पर कभी जानते हैं जानते हैं बोला उसी ना तो थोड़ी मिच्छा में दुकड़म दे दीजिए, है ना। और मैं आपने कहां कहां बोला आपको याद दिला देता हूं। वो आसमान में चलने वाले शनि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हेलो, अरे बोलो ना, वो नीचे आया क्या तुम्हारा बिगाड़ने के लिए? नहीं, ठीक है, क्यों? वह शनि रे 7:30 लागे, वो किन आया थाने लागा ने बेचारो आराम से ऊपर घूम रहे, उन्हें मालूम भी को नहीं थे आठे हो कि नहीं। नहीं, खोज होनी चाहिए। शनि को पता है क्या मैं यहां बैठा हूं? और मुझे लगता है उसको पता नहीं है। पर थे क्यों उतारे हो कि उरी साड़ी साथी लगे थे क्यों उतारे हो कि मने वो राहु काल कई काल सर्प योग कोई गजब की बात है यार कौन सा योग काल सर्प योग मजा है अब वो कहता है भैया मैंने कुछ नहीं किया तेरे करम हेलो आदमी खराब की आदमी का भाग्य खराब ठीक है बोलो मारो टाइम खराब चल रही मैं कहना अच्छे चल रही लखन तो देखो था अरे बदनसीब हो कि बद हो अभी नहीं बोली ला खुशी एकलव्य ने नहीं कहा कि मुझे साड़ी सती लगी एकलव्य ने कभी स्वयं को कहा नहीं कि मैं बदनसीब हूं द्रोणाचार्य ने पूछा बोले मैंने आपसे सीखा बोले कैसे तो बता दिया चलो वहां पर है मेरे पास तुम हेलो अगला वाक्य थोड़ा संभालने समझो ये दुनिया किसी को मजबूत बनाती नहीं लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाए बिना वाह उस दुनिया के तुम मेंबर हो कौन सी दुनिया के हाथ ऊपर करना आज तक तुमने किसी को मजबूर नहीं किया हो उस व्यक्ति ने हाथ ऊपर करना हेलो नहीं हमने मजबूर किया है चलो तुमको किसी ने मजबूर नहीं किया हो ऐसा व्यक्ति हाथ ऊपर करे अरे आपको मजबूर भी किया है और आपने भी दूसरे को द्रोणाचार्य एकलव्य को मजबूर करता है अरे जिसको बधाई देनी चाहिए जिसका अभिनंदन करना चाहिए जिसकी कला का गौरव करना चाहिए धन्य है तेरी श्रद्धा धन्य है तेरा समर्पण कि बिना सिखाए तू सीख गया है लेकिन ये दुनिया उद्रोना चाहिए तूने गुरु दक्षिणा दे क्या दे हेलो बोलो ना यार थाने थोड़ी के लिए मैं नहीं मांगू था कने डरो मत मैं केवल एक ही जगह मांगता हूं कहां पर यस और वो मुझे मांगने देते ही नहीं है और मैं आपसे आग्रह करता हूं अरे दाता देखो तो ऐसा देखो जो तुम्हें मांगने न लगाए जो बिन मांगे दे उसको गुरु कहते हैं और गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा में क्या मांगा अंगूठा काट करके मांगा आप भी जानते हो कि किसी तीरंदाज के लिए अंगूठा गया तो पूरी जिंदगी लेकिन क्या एकलव्य है काट करके अंगूठा दे दिया लेने वाले को शर्म आनी चाहिए थी मैं बोलता हूं लेने वाले को शर्म आनी चाहिए थी खून बेहतर और अंगूठा लेकर के द्रोणाचार्य चले गए उसके जख्म को संभाला तक नहीं ये दुनिया ऐसी है अंगूठा काट के लेती है जख्म कर देती है और जख्म को संभालने के लिए भी रहती नहीं है ये कड़वा है लेकिन ये सच्चा है। धन्य उस एकलव्य को, तुम मुझसे अंगूठा काट ले सकते हो लेकिन मेरी श्रद्धा तुम ले नहीं सकते हो। तुम मेरी सीखने की जिज्ञासा मेरे से ले नहीं सकते हो। मैं सीख करके रहूंगा पर अंगूठा देने के बाद बिना अंगूठे के तीर चलाने में अर्जुन से और द्रोणाचार्य से भी अधिक मास्टर हो गया है। हेलो, बस वन मिनट रुक रहा हूं। बहती नदी का पानी कभी रुकता नहीं, बहती नदी का पानी कभी रुकता नहीं, तुम चाहे जितना रोकने का प्रयास कर लो। और पत्थर रुके बिना, बोलो जल्दी बोलो, पत्थर रुके बिना रहता नहीं। कितना ही फेंको, कितना ही जोर लगाओ, कठिन कठे जाने रुक जाएगा। और पानी, जल्दी बोलो, हु आर यू, हु आर यू, अरे थाने पूछ रही हो, हु आर यू स्टोन और वॉटर, कोई जवाब नहीं दे दिया है ना। जो रोकने से रुक जाते हैं, जो रोकने से रुक जाते हैं वे स्टोन होते हैं, जो रोकने के बाद भी रास्ता बना लेते हैं वो पानी होते हैं। ऐसा पानी बनना है। तो कल गुरु पूर्णिमा पर आप सबको आमंत्रण, जिन्होंने जिन्होंने गुरुदेव के अलावा और किसी को उंगली थामी होगी, मेरा आग्रह है, मेरा आग्रह है कि थाम लो गुरु के चरण, और किसी चरण की जरूरत न पड़ेगी। और कल उनके गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम दोपहर में 4 से 5 बजे। मुझे कल बाबू सेठ पूछने आया है, बोले मारा सब कितना लोग आएगा, अब जवाब थे दो है नहीं, जवाब किसने देना, आने वाले ने देना कि मैंने देना। और वो पूछता मुझे, अब मुझे तो किसी ने कहा नहीं कि कौन कौन आने वाला है। भाई तेरे पास
1: फॉर्म है,
0: उसका भी अकाउंट गड़बड़ा है। तो ठीक है भाई, जो आएंगे वो आएंगे, जितने आएंगे वो तुम तुम्हारा देख लेना, नहीं आएंगे उसको समय देख लेगा, नहीं आएंगे उसको समय देख लेगा, और जो आएगा उसको मेरे गुरुदेव देख लेंगे। कल दोपहर में 4 से 5 गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतोदमो मंगलम, चदारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा, चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना और न शरणा कोई, जो भवे प्राणी करे आराधन, अक्षय अमर पदोय। आराम से बाकी ध्यान में रखना।

0: कल प्रसुम प्रार्थना 6:30 बजे।
1: और कल सुबह से मधुर गायक जिनकी स्वर लहरी आपको सुनने के लिए आप हमेशा लालायित होते हो, उन्हीं के ही मधुर कंठ में कल सुबह से 6:30 से गुरु भक्ति प्रभु भक्ति की प्रार्थना का कार्यक्रम शुरू होगा गुरुदेव के स्मृति धाम में। स्मरण कक्ष से शुरू होगा,
0: 6:15 बजे भक्तामर चालू,
1: 6:15 बजे भक्तामर शुरू होगा, 6:30 बजे प्रार्थना होगी और स्मरण कक्ष में होगी। और वहां का यदि आपने हॉल भर दिया तो फिर पंडाल में जाएंगे। ओके, आज का एकासन उगे ईश्वर एक समय गपलान तीन आहार के बदकान स्वासनम खैमन सैमन सहसागरेणम महत्ता गरेणम सो समयावत्यागरेण ओ श्रे ओ श्रे ओ श्रे। आज का आयम बील आज का बेला दो पास उगे सुरे छठम भत्तम बच का तिवियम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेणम महत्ता गरेणम सो समय वत्या गरेण ओ सरे ओ सरे ओ सरे। और कोई पचकान चार उपास उगे सुरे दस भत्तम बच का तिवियम प्यारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेणम महत्ता गरेणम सो समय वत्या गरेण ओ सरे ओ सरे ओ सरे।
2: तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, ऑनलाइन
1: ऑनलाइन 16 उपास के पंचकान, ऑनलाइन 16 उपास के पंचकान होगे सुरे 34 भक्तम बच का तिवियम प्यारम स्वासनम खैमन सैमन सहसा गरेणम महत्ता गरेणम सुभ समय वत्या गरेण ओ सुरे ओ सुरे ओ सुरे। 16 उपास के पंचकान लेने वाले को
2: धन्यवाद।
1: तो कल सुबह प्रार्थना होगी और कल का कार्यक्रम अपना 8:30 बजे शुरू होगा और 9:45 बजे से अपने प्रतिक्रमण की आवश्यक सूत्र की 3 अक्षर की साधना शुरू होगी। जिन जिन को भी जोड़ सकते हैं जरूर जोड़ लेना। कल एकासन आयम्बिल उपास रात्रि का पौषध दिन का पौषध जो भी आप करना चाहे आपका स्वागत है। हम वो सूचना पर मंगल पाठ और एक मिनट कल पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना का शिविर किशोर गुलाब में शुरू हुआ। करीबन मोर देन 70 पार्टिसिपेंट उसमें जुड़े हुए हैं। धामनों से एक कपल पहुंचा है, दूर दूर से एमपी से भी आए हैं, चेन्नई से आए हैं, बेंगलुरु से भी आए हैं, बाहर से आए हैं। मैंने सोचा था कि नगर वाले इतना फुल करेंगे कि बाहर वाले को कहना पड़े नो एंट्री, पर नगर वाले बहुत उदार है, बहुत उदार है। वो कहते नहीं थे ले लो, मैं बाद में देखा ला।
3: श्रोते हो, जीवनात आलेले अपयश नैराश्य वैफल्य यातून यशस्वीपणे बाहेर पडण्यासाठी आध्यात्मिक विचार ऐकणं अत्यंत गरजेचं आहे। हे विचार आपल्याला जीवनात येणाऱ्या अडीअडचणी संकट आणि समस्या यांचा सामना करण्यासाठी तत्पर ठेवतात। हेच विचार आपण ऐकलेत परमपूज्य प्रवीण ऋषीजी महाराज साहब यांच्या प्रवचनातून। आता वेळ झालीय तुमचा निरोप घेण्याची। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।
4: स्नेहालय संचलित स्नेहदीप रुग्ण सेवा केंद्र, परावलंबित्व आलेल्या सर्व वयोगटातील रुग्णांना दर्जेदार निवासी सेवा सुश्रुषा देणारा उपक्रम म्हणजेच स्नेहालय संचलित स्नेहदीप रुग्ण सेवा केंद्र। सर्व वयोगट, आजारपण, अपघात, शस्त्रक्रियेनंतरचा बरे होण्याचा काळ, वृद्धत्वातून अनुभवलेल्या शारीरिक आणि मानसिक आजारातून बरे होताना आवश्यक ती परिचर्या, काळजी आणि सुश्रुषा घरगुती वातावरणात आणि रास्त दरात पुरवणारा एक उपक्रम म्हणजेच स्नेहालय संचलित स्नेहदीप रुग्ण सेवा केंद्र। अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा 9970064455 किंवा 7499980845 या क्रमांकावर। एक वेळ अवश्य भेट द्या स्नेहालय संचलित स्नेहदीप।

परम संदेश पूज्य गुरुदेव के कोटि से वंदना धर्म सभा के गौरवात्मक स्थान पर विराजमान गुरुदेव के इस पावन पान महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री जी के चरणों में ही संत उत्साह उत्साह उल्लास उमंग और श्रद्धा के साथ उपस्थित श्रद्धालु श्रोतागण आज दो संदर्भ पर बात करनी है।

पहला संदर्भ है जिसके बिना जीवन शुरू नहीं होता है। आयुष्य शुरू होता है सांस लेने से, और सांस लेने के लिए या तो जन्मा हुआ बच्चा रोता है या परिवार वाले उसके रुलाते हैं। अब जी जिंदगी की सांस लेने के लिए ही रोना मजबूरी हो उस जिंदगी की बात कोई करनी नहीं, लेकिन एक

जिंदगी है जो तभी शुरू होती है जब मन में गुरु की आस जगमती है और गुरु के आशीष मिलते हैं। वे मंजिल पर पहुंच गए जिनको गुरु की प्यास जन्मी, उनकी प्यास ही साधना हो गई, जिनको गुरु के आशीर्वाद ग्रहण करने की कला आ गई, जिसकी कोई संभावना नहीं थी वो चंडकोशिक भी मंजिल पर पहुंच गया जब उसको तीर्थंकर महावीर के आशीर्वाद मिल गए। छह पुरुष और एक नारी की हत्या निरंतर करने वाला अर्जुन माने भी नमो सिद्धानम का अधिकारी बन गया जब उसने जग गुरु, लोक गुरु, त्रिलोक गुरु तीर्थंकर महावीर की शरण को स्वीकार किया। इस सत्य को स्वीकार करिए कि मैं और आप यदि मंजिल पर नहीं पहुंच पाए इसके पहले, तो उसका कारण यह नहीं कि आपके जन्म पत्र में योग नहीं था, उसका कारण यह नहीं कि मेरे पिछले जन्म के पाप बहुत थे, उसका कारण यह नहीं कि मैं बदनसीब या दुर्भागी हूं। मैं गारंटी से आपको बिना पूछे कह सकता हूं कि आप में से किसी ने भी रोज छह पुरुष और एक नारी की हत्या करने का विचार कभी किया ही नहीं है। करने की बात तो दूर, तो अर्जुन माली के पास जितना पाप था उसकी तुलना में तुम्हारे और मेरे पास पाप कौन सा ज्यादा है? अर्जुन माली ने कितने लोगों को मारा इसका तो फिर भी काउंटिंग है, चंड कौशिक ने कितने जीवों को मारा इसकी तो कोई काउंटिंग भी नहीं है। चंडकोशी के तुलना में प्रवीण ऋषि का गुस्सा, तुम्हारा गुस्सा तो कोई मायने ही नहीं रखता है। इसके बावजूद वो मंजिल पर पहुंचता है तो उसका कारण ये नहीं कि उसका सौभाग्य था, उसका भाग्य था, उसका एक न्यू कारण है तो इसको गुरु की कृपा मिल गई। जिसको गुरु की कृपा नहीं मिली और बाकी सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो दुर्योधन तड़पते तड़पते मर गया। जो उसने चाहा उसके बाप ने किया, जो उसने चाहा उसके दादा ने किया, जो उसने चाहा उसके माँ ने किया, जो उसने चाहा उसके मामा ने किया, जो उसने चाहा उसके भाइयों ने किया, जो उसने चाहा उसके दोस्तों ने किया, जो उसने चाहा उसके गुरु द्रोणाचार्य ने किया। लेकिन फिर भी ना स्वयं को बचा सका, ना अपने भाइयों को बचा सका, ना अपने गुरु को बचा सका, क्योंकि गुरु कृपा की कभी प्यास उसमें जन्मी नहीं।
अर्जुन ने वो प्यास दी, अर्जुन ने सेना को नहीं चुना, निहत्ते श्री कृष्ण को चुना। डिक्लेयर था श्री कृष्ण का कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ पूरे शस्त्र अस्त्र से संपन्न सेना है और एक तरफ निहत्ता श्री कृष्ण है। और ये हौसला जिसमें होता है, सेना को छोड़कर के निहत्ते श्री कृष्ण को चुनने का, जीत उसी की होती है। आज का दिन है जिंदगी के सारे निर्णय को बदलने का, सारी अपने अंदर की याचनाओं के कैरेक्टर को चेंज करने का। आज रोम रोम से एक ही तमन्ना जन्मे है कि मुझे बस गुरु चरण चाहिए।

ये तमन्ना, ये आस, ये प्यास दिमाग से नहीं हो, शब्दों से ना हो, दिल से हो। और मैं पूरे धर्म संघ की ओर से, पूरे धर्म संघ की ओर से मतलब जैन धर्म संघ की ओर से नहीं, दुनिया के सारे धर्म व्यवस्थाओं की ओर से, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्ध, शैव, वैष्णव, वैदिक, जैन, सैकड़ों धर्मों की ओर से, उनकी साक्षी से आपको एक ही बात कह सकता हूं कि जिसको गुरु की प्यास लगती है उसको गुरु अमृत का सागर बनकर के मिलते ही मिलते हैं।

कोई देवी तुम्हारी प्रार्थना सुनेगी या नहीं सुनेगी मुझे पता नहीं, कोई देवता तुम्हारी तमन्ना पूरी करेगा या नहीं करेगा मुझे पता नहीं, कोई भगवान तुम्हारी सुनेगा या नहीं सुनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की पता है, गुरु कभी किसी की पुकार को अनसुना नहीं करता है। ये शाश्वत सत्य है, ये किसी परंपरा का सत्य नहीं, किसी मान्यता का सत्य नहीं, ये किसी समाज का सत्य नहीं, किसी देश का सत्य नहीं, ये शाश्वत सत्य है। जब तक गुरु नहीं मिलते वाक्य को चेंज

उस गुरु की आराधना करने का दिन है। आज का दिन मेरे बिना चाहे, मेरे बिना बुलाए, जिन्होंने निरंतर मेरे पर कृपा बरसाई, उनके प्रति समर्पण करने का दिन है। मां रोने के बाद दूध पिलाती है, दुनिया के सारे देवी देवता तुम्हारे माथा रगड़ने के बाद तुम्हारी डिमांड पूरी करने का आश्वासन देते हैं, पूरी करते नहीं करते मुझे पता नहीं। दुनिया में केवल एक ही तत्व है, गुरु तत्व, जो तुम्हें रोने के पहले संभालता है। वो ठोकर खाने के पहले संभालता है, वो चोट लगने के पहले सहज लेता है, वो ट्रीटमेंट नहीं करता, वो बीमारी नहीं पड़ने देता है। और ये हमारी नादानी है कि हम ट्रीटमेंट करने वाले को धन्यवाद देते हैं और जो बीमार नहीं पड़ने देता उसको याद नहीं करते। लेट मी रिपीट, ये हमारी नादानी है कि हम ट्रीटमेंट करने वाले को धन्यवाद देते हैं और जो हमें बीमार ही नहीं पड़ने देते उनको हम भूल जाते हैं। ये दीन है आज का कि जिन्होंने मुझे बीमार नहीं पड़ने दिया, भटकने नहीं दिया, रोने नहीं दिया, उनके उपकारों को महसूस करने का। इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और ये भारतीय संस्कृति है कि पहली पूर्णिमा गुरु को ही समर्पित करिए और दूसरी पूर्णिमा भाई बहन को समर्पित करिए। आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु को है, श्रावणी पूर्णिमा भाई बहन को है। तो आओ सीधे बैठे, आंखें बंद करें, महसूस करें स्वयं को।

महसूस करते हुए झुकते चले जाए, झुकते चले जाए, झुकते चले जाए, तब तक झुकते चले जाए जब तक मस्तक जमीन को नहीं लगता है। झुकते चले जाए, झुकते चले जाए कि जब तक गुरु चरण का स्पर्श आपके मस्तक को नहीं होता है। झुकते चले जाए, झुके रहे, झुके रहे, झुके रहे। और महसूस करें कि आपके सिर पर गुरुदेव का हाथ है, वो कोमल कृपा बरसाता हुआ है, आपके अंदर के सारे पाप को साफ करता हुआ है। और बहुत गहराई से बोले,

मेरे पीछे दोहराएंगे, जम किंची मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सव कालियाए सो मिच्छो वयाराए जो में अवराहा कया जो में अवराहा कया तस्स में खमंतु गुरुदेव खमंतु गुरुदेव खमंतु गुरुदेव। मैंने क्रोध से अहंकार से कपट से लोभ से जो जो आपका अभिनय मन वचन काया से किया है

गुरु कृपा। आप ही मेरे जिंदगी के दीपक हो, आपसे ही मेरे जिंदगी में उजाला है। तुम्हारे बिना जीवन अंधियारा है। तुम ही मेरे प्राण हो, तुम नहीं मैं नहीं।

आज आषाढ़ी चौमासी पक्की, जिसकी चर्चा हम पिछले दो दिनों से करते आ रहे हैं, ये दिन है एक निर्णय करने का, इसको समझने का। गुरुदेव के ही शब्दों में, चोर रोज नहीं आता, चोर रोज नहीं आता, लेकिन दरवाजे को ताला लगाए बिना हम कभी नहीं सोते। कौन कौन है आप में जो जिस दिन चोर आएगा उस दिन ताला लगाएगा? हेलो, कोई है नगर में, धर्म सभा में, जिसके पास इतना ज्ञान है कि आज चोर आएगा इसलिए आज ताला लगाता हूं, और जिसको पता है कि आज चोर नहीं आएगा इसलिए आज ताला लगाने की जरूरत नहीं? कोई है क्या? नहीं हो तो मुझे उससे मिलना है। गुरुदेव फरमाते थे चोर का आना निश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है। 365 दिन में कभी एकान पर आया तो आया, लेकिन पाप तो कंफर्म है, वो तो आएगा ही आएगा। वो नहीं आएगा इसकी किसी को गारंटी नहीं है, उसके आने की गारंटी पक्की है। जिसके आने की गारंटी पक्की है उसके लिए दरवाजा बंद करना, उसको कहते हैं आषाढ़ी चौमासी पक्की। एक कैमरामैन, वो कैमरामैन, मसल जाता तो भी आई थोड़ा सा, मसल समझता से आई। पचक खाने न मनते जीवे किम जनाई, कमिटमेंट करने के कारण से क्या होता है, एग्रीमेंट करने के कारण से क्या होता है, डील हो जाती है। और अपने जिंदगी के साथ कमिटमेंट करना है, अपने जिंदगी के साथ एग्रीमेंट करना है, अपने भविष्य का एग्रीमेंट करना, अपने भविष्य की कमिटमेंट करना, इसको पचकान कहते हैं। पचकान का इतना ही मीनिंग है, मेरे फ्यूचर का एग्रीमेंट, मेरे भविष्य का निर्णय कि मेरे जिंदगी का दरवाजा किसके लिए खुला रहेगा, किसके लिए खुला नहीं रहेगा, कौन सा दरवाजा खुला रहेगा, कौन सा दरवाजा खुला नहीं रहेगा, ये तय करना, इसको पचकान कहते हैं, इसको संवर कहते हैं, इसको सुरक्षा कहते हैं, इसको सेफ्टी जोन कहते हैं, इसको वैक्सीन कहते हैं। और इस वैक्सीन की ही कमाल है कि दुनिया से पोलियो गायब हो गया, इस वैक्सीन की ही कमाल है कि चेचक की बीमारी दुनिया से गायब हो गई। लेकिन उस तीर्थंकर परमात्मा के तरफ देखो एक बार, जिन्होंने ऐसी वैक्सीन दी कि पाप का वायरस का अटैक हो भी जाए
तो भी पाप का बुखार ना आए। ये पाप की वैक्सीन को पचकान कहते हैं। और उसको लेने का दिन उसको आषाढ़ी चौमासी कहते हैं। एक निर्णय करना है 4 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? मैंने ऐसा सुना है कि समर्पण चतुर्मास समिति में 4 महीने। चतुर्मास समिति क्या है? समर्पण जीवन समिति नहीं है, समर्पण चतुर्मास समिति है। और उन्होंने तो पहले दिन से तय किया, जिस दिन 4 महीने पूरे हो जाएंगे विदाई समारोह पक्का करेंगे। बराबर है ना? आज तक का इतिहास तुम्हारा वही है ना? जिस भी संत को तुमने लाया उसको 4 महीने की चौमासी पक्की होने के बाद

जो सबके साथ हुआ वही मेरे साथ होना है। तो 4 महीने की बात है, कितने महीने की? 4 महीने की। 4 महीने की वैक्सीन लगानी है। अरे आज यहां बैठे बैठे आपने तय करना है कि मैं 4 महीने में क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं कराऊंगा और किसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। 3 वाक्य फिर दोहरा रहा हूं, क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं कराऊंगा और किसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। गुस्सा में करूंगा नहीं, इनफ नहीं है। गुस्सा में कराऊंगा नहीं, ये बहुत जरूरी है। कई सयाने लोग गुस्सा करते नहीं है, कई सयाने लोग गुस्सा करते नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करते हैं कि सामने वाले को गुस्सा करना ही पड़ता है। हेलो, थाने अनुभव है कि नहीं? लोग वो गुस्सो नहीं करे, लेकिन अपना ने गुस्सो कराए बिना रेवे नहीं। सारी माताओं को यह अनुभव है ना बच्चों का, बच्चे गुस्सा नहीं करते, बच्चे गुस्सा नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ करते हैं कि मम्मी को गुस्सा बोलो ना, करना पड़े ना। हेलो, तो बोलता जाओ ना, थको भी नंबर है। ये गुस्सो नहीं करे, पर ईसो कोई करे कि थाने गुस्सो आधे किस्सा बोले है ना। तो गुस्सा करना नहीं पर्याप्त नहीं है, गुस्सा करवाना भी नहीं, और गुस्से को सपोर्ट नहीं करना। कई लोग गुस्सा करते भी नहीं है, गुस्सा कराते भी नहीं है, लेकिन गुस्से को सपोर्ट करते हैं। यस और नो? कटे थोड़ा गुस्सा रो नाटक चल रही हो शीला, लाइव सीन चल रही हो शीला, लाइव गुस्सो चल रही हो शीला, उठे देखने खड़ा रहे हो कि निकल जाओ। हेलो, खड़ा रहे हो क्या लिए? वो सपोर्ट करने के लिए। स्टेडियम में जाते किसके लिए? खेलने वाले को सपोर्ट करने के लिए। यहां किस लिए आए? प्रवीण ऋषि को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए सारे सपोर्टर का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, इतना सपोर्ट मिल गया तो है ना, 4 महीने तो पार, बीजेपी 400 पार गई कि नहीं गई, लेकिन इतना सपोर्ट मिल गया तो प्रवीण ऋषि तो के तो 4 महीने पार। अरे भूलो ना, हो गए कि हो जाएंगे? देख लेना, थोड़ा आपको डाउट है तो क्लियर कर लेना। तो इतना सपोर्ट आपने दिया तो उसके लिए तो धन्यवाद तो देना ही चाहिए। तो तय करना है कि मैं गुस्सा करूंगा नहीं, गुस्सा कराऊंगा नहीं, गुस्सा करने वाले को सपोर्ट नहीं करना। सपोर्ट नहीं करने का मीनिंग क्या होता है? कोई गुस्सा कर रहा है ना, वहां खड़ा ही नहीं रहना। क्या उठे खड़ो से नहीं रहोगा? चो घर में करो कि पंडाल में करो कि कठे भी करो, कोई भी करो, जटे गुस्सो शुरू हुई हो उन्हें अटेंड करना नहीं। अच्छी कला है ना? और यदि आपने गुस्से को अटेंड नहीं किया कि सामने वाले का गुस्सा, हेलो, गुस्सो क्यों करे सामने वालों? अनुरो गुस्सो लंबो क्यों चाले? अपन अटेंड करा। मैं बखान शुरू क्यों करियो अन बखान कंटिन्यू क्यों करियो? हेलो, थे बखान ने अटेंड कर रहे हैं,
हे जर बखान शुरू करें का साथे उठ रही जाओता तो मैं बखान कर सकते हो कहीं बोलो ना, मैं बखान क्यों कर रही हूं? मैं अटेंड कर रहा हूं, सामने वाला गुस्सा क्यों करे? अपन अटेंड करा, अटेंड मत करो। यदि आपने अटेंड नहीं किया, भगवान महावीर ने क्या किया आपको पता है क्या? चंडकोशी के गुस्से को अटेंड नहीं किया। चंडकोशी गुस्सा करता गया, भगवान ने उसको रिसीव दिया नहीं, रिस्पॉन्स दिया नहीं, रिप्लाई दिया नहीं। रिसीव नहीं करना, रिस्पॉन्स नहीं देना, रिप्लाई नहीं देना, रिएक्शन नहीं देनी, मैंने गुस्सा ने सपोर्ट मिले को नहीं, और सपोर्ट नहीं मिलो तो किसी की भी सत्ता रहती नहीं है। सत्ता कब रहती है? जब सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट नहीं मिला तो सत्ता रहेगी नहीं। आप गुस्से को सपोर्ट करते हो इसलिए गुस्सा रहता है। क्या लगता है आपको, मैं खुरो बोल रही खोटो बोल रही हूं? बोलो ना, खरा है ना? तो गुस्सा ने सपोर्ट तय करने जाए। मैं 4 महीने रात्रि भोजन करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, करने वाले को सपोर्ट दूंगा नहीं। मैं 4 महीने कॉफी पीने के लिए सुबह जाऊंगा नहीं, मैंने नगर आवन का पेली को रिपोर्ट है मारा कहने कि नगर वाला फक्त कॉफी पीवाने सुपा जावे और ये सेल्फी निकालने वायरल करे हैं। मुझे जका नहीं जा रहा है, मैंने उचकावे। मैं 4 महीने गौतम प्रसादी और घर की प्रसादी के अलावा, गौतम प्रसादी और घर की प्रसादी के अलावा बाहर का अपने पेट में कुछ नहीं डालूंगा, ये तय कर लो। हेलो, मैंने कल बड़े महाराज साहब से एक बात करी थी। मैंने कहा ये सारे होटल बंद हो जाए ना तो सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। क्या लगता है आपको, ये हॉस्पिटल को पावर कहां से मिलती है? होटल से मिलती है। और मुझे और एक जानकारी मिली, अब क्लाउड रेस्टोरेंट खुल गए। कौन से रेस्टोरेंट? हेलो, मालूम है तुम्हें? क्लाउड किचन। देखो, मेरे से पहले उसको जानकारी, मुझे नहीं दी उसने। देखो कैसा है, मेरे पास कल जानकारी के आया है, मैंने आज बोला, उसके पास पहले से छिपा के रखता। अच्छा है क्या? नहीं तो अब क्या करना? बस इतना सब तय कर लीजिए कि 4 महीने में घर का और गौतम प्रसाद के अलावा मेरे पेट में बाहर का कुछ नहीं डालूंगा। ये सुन लो, हाँ तुमने तो पचकन दिया राज, डिक्लेयर कर देता हूं, अनिल वो पोखरना को पचकन दिए है, दूसरे पचकन दिए 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाकर के राजेंद्र चोपड़ा को, बेकरी प्रोडक्शन खाना नहीं, स्पाइसी खाना नहीं, बाजार की मिठाई खानी नहीं, और सूर्यास्त के बाद फूड खाना नहीं। उसके रसोइयों को भी पचकान दे करके आए, इसको खिलाना नहीं। अब
अब ठीक के बोला कि मार सब बुरा घरे जाने पचकान दिया, मारा घरे आने पचकान दो तो मेलू ना तुम्हारे तो कल्याण हो जाए ना। उन्हें घरे पचकान दिया, थाने गुरु के घर में पचकान दे रहा हूं। कौन सा घर अच्छा है, कौन सा घर अच्छा है, अपना घर अच्छा कि गुरु का घर अच्छा? तो गुरु के घर पर पचकान लो। चार महीने में नो बेकरी प्रोडक्शन, नो बिकानेरी भुजिया, नो कल्याणी भेड़,

0: कठहल की पानी पूरी, पानी पूरी के पचकान नहीं देता हूं, इनसे बनाना और खाना, बाजार की पानी पूरी नहीं खाना। देखो मेरे पास बहुत कुछ जानकारी है, मैं बोलता नहीं हूं, यदि जानकारी दी ना मैंने आपको, तुम तो पानी पूरी सपने में नहीं खाओगे बाजार की। बस छोटी सी जानकारी देता हूं कि मेरा टाइम हो गया है। ये जितने भी ठेले चलाने वाले हैं उसमें कुछ जैन लोग भी रहते हैं, उनसे मेरी बात हुई, इंदौर में हुई, पुणे में हुई। उनको मैंने सहज पूछा, जितना माल बनता है उतना सारा बिक जाता है क्या? ते ही बोले मार साहब बच जाता है। मैंने कहा बचे वह क्या करते हैं? बोले मार साहब रस्ते में कचरा कुंडी देख करके डाल के आ जाते हैं। मैंने पूछा, मेरे समान बताता हूं, मैंने कहा घर क्यों नहीं लाते, आप क्यों नहीं खाते घर ला करके? बोले मां साहब खा ही नहीं सका। क्यों खा ही नहीं सका? खिलाओ थे। बोले मां साहब खिलावन का पैसा मिले और खावन की बीमारी मिले, ये सच्चे बता रहा हूं। इंदौर में पहला चौमासा था, प्रवर्तक श्री जी की सेवा में गोत्री में ही जाता था, और आपको पता है कि इंदौर का नमकीन कितना फेमस है, और मुझे नमकीन उस समय बहुत भाता था। मैं सारे नमकीन के जिनके जिनके नमकीन की दुकानें थी उनके घर पर गुजरी जाता था, वो समझदार नमकीन बेराते ही नहीं थे। अब बोल भी कैसे सकता हूं, कह भी नहीं सकता हूं कोई भाई दे। एक 15-20 दिन एक महीना बीतने के बाद एक बार एक थोड़ा सा नजीक आया, मैंने उसको पूछा, अरे भैया तुम्हारी घर में भट्टी चलती है नमकीन की, हम गोत्री आते हैं, तुम नमकीन बेराते क्यों नहीं? बोले मार साहब हम भी नहीं खाते, तुमको क्यों बेरा? ये सगड़ा इंदौर नमकीन वाला कठे मने। पर अगली बात जो उसने कही, तब से मैंने बाजार की नमकीन खानी बंद कर दी। तुकाराम मुंडे को जाकर पूछ सकते हो, और मुझे लगता है इस सभा में चतुर्मास में मैं समर्पण चतुर्मास समिति को आग्रह करूंगा कि एक बार तुकाराम मुंडे को यहां बुला करके उसका सम्मान करिए। एक ऐसा बंदा कि जिसने सारे पाखंड की पोल खोल दी, और उसका सम्मान होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? होना चाहिए ना? वाह, अरे मुझे धन्यवाद दो, मैंने किसी के सम्मान देने की बात कही है? मैं तो प्रवीण ऋषि और किरो सम्मान, तो बस अपना टाइम हो गया है, मैं मंगल पाठ सुना रहा हूं। जिनको बैठना है वो बैठ सकते हैं और बैठे बैठे ही मंगल पाठ सुन सकते हैं, जिनको जाना है वो मंगल पाठ पूरा होने के बाद आराम से उठ करके जा सकते हैं, शांति से जा सकते हैं। केवल इतना याद रखना।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषिजी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित
2: रसिक हो रेडिओ नगर 90.4 FM तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे संगीत आणि मानसिक आरोग्याची सांगड घालणारी विशेष मालिका स्वर संजीवनी। गायक आणि सादरकर्ते सुहास जोशी। मधुमेह, पित्त अशा अनेक विकारांवर लाभदायक तसेच दैनंदिन काळजी आणि ताणतणाव कमी होण्यासाठी या स्वर संजीवनीचा नक्की उपयोग होईल ऐकायला विसरू नका स्वर संजीवनी, सोमवारी रात्री 9 वाजता आणि पुन्हा प्रसारण गुरुवारी रात्री 10 वाजता फक्त रेडिओ नगर 90.4 FM वर.

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।